0: कि समय तम बहे बाहर को माता से तो थे फल नो नियो बोले अफे तक जो बता साउदी बाकुंडा से ना पूजा बक्की ने पिसल
1: Ovintis, ne mak informasau balorong ohing, husi studi sentral kampung alor dili, hawer siana belo, lori kipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.

0: किसने तमाम बने दे बाहर जो माता से रित थे फल नो नियो बोले अफेयर का जो बता साउदी बाकुमला से नियो पूजा बत्ती ने पिसन
1: Ovintis, nei maki informasau balorong ohing, husi studi sentral Kampung Alor Dili, hawer siana belo, lori kipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.